0: जरूर अब ज्वाइन करोस CS6 रेवोल्यूशन सहभागी होस होंडा एक्सटेंशन फाइनेंस महोत्सव में कुछ भी पुराने मोटरसाइकिल लिया और इंस्टेंट एक्सचेंज करोस नया होंडा संग इजी फाइनेंस रु 6000 को टॉप वैल्यूएशन और 5000 कैश बैक आज आउनुहोस् नया होंडा बाइक चढ़ जानुहोस्
1: नीति यही बैशाख 27 देखि जेठ 1 गते सम्म स्पान न्यू बुलबुले ऑटो सेल्स जुम्ला रोड सुर्खेत संपर्क मोबाइल नंबर 97670 56813 97670 56814
2: सूचना
3: कर्णाली ट्रमा केयर वीरेन्द्र नगर 8 खजुरा सुर्खेत में प्रत्येक शनिवार स्वास्थ्य शिविर संचालन होने जानकारी गराउँदछौं। यस शिविर में अपने गांव का सुपुत्र अमेरिकाबाट फेलोशिप प्रशिक्षण प्राप्त पहिलो हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगत सिंह धमला स्वयं उपस्थित भई उपचार गर्नुहुने जानकारी गराइन्छ। डाक्टर धमला हड्डी पुनर्निर्माण हड्डी बाङ्गोपन को सुधार र जोर्नी प्रत्यारोपण में विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ।
2: शिविरमा दिइने सेवाहरू हड्डी जोर्नी ढाड र हात खुट्टा बाङ्गो हुने समस्या पुरानो भाँचिएको जोडिने हड्डी छोटो लामो हुने समस्या र घुँडा मुन्डा फिरपात जोर्नी प्रत्यारोपण सम्बन्धी सशुल्क परामर्श प्रदान गरिनेछ।
3: सम्पर्क कर्णाली ट्रमा केयर वीरेन्द्र नगर 8 खजुरा सुर्खेत
4: रेडियो भेरी FM।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: पुलिस दमकल एम्बुलेन्स को फोन नम्बर जुनसुकै समय में चाहिन सक्छ। कण्ठ पारो वा सबैले देख्ने ठाउँमा राखौ।
1: सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

नेपाल पे क्यूबार में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तो है ना यार।
1: शहर में भीड़ था मानसी अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बाप माँ ठूलो समेला। ये इंसानियत सबका मरेला, बुरे जवानी के पीछे पड़ेला, ठगी चोरी दिमाग चढ़ेला। पैसा बहुत से बरकत है ना, दो घड़ी को पनी फुर्सत है ना, पैसा था सब कुछ ठीक था, समुन्द्र किनारे पानी ठीक था।

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: संगे
1: नेपाल पे क्यूबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: संगे नेपाल पेक्यूबार में आवत हुई क्लक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पेक्यूबार में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पेक्यूबार नेपाल के अपने क्यूआर
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व 102.7 मेगाहर्ट्ज
3: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र विश्व शान्तिको पक्षमा सम्झौता हुने प्रथम कोशी टप्पू खुल्ला महिला राष्ट्रिय कबड्डीको उपाधि सशस्त्र प्रहरीलाई
4: सयौं रेडियो

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेंद्र नगर सुर्खेत बाट
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा ईरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व 102.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

महाराज परीक्षित यसरी भगवान प्रभु को प्रार्थना करे आखिरमा भगवान इस कारणबाट नवी राजाले संतान उत्पादन नभएको कारणले नवी राजाले भगवान को भजन और कीर्तन मनन करे। नवी राजा का छोरा जन्म नभयो जन्मने बेला भएको थियो त्यसै बेलामा सबले विनती करे।